0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं.
1: मतलब?
2: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof.
1: स्पेशल तो लग रही है.
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड.
3: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: Abhi easy paisa load in packages hub se Uphone ya Telenor ka weekly power grand package subscribe kare aur aaram se ghar baithe 100 rupees ka discount paaye. To der kis baat ki? Amazing discounts unlock karo with easy paisa digital bank. Easy wala bank.
6: HBL Freedom account ke saath muft IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब वहां HBL.
7: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
8: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 1000 रुपए का डिस्काउंट पाएं. तो देर किस बात की? क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
9: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात.
10: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब वहां HBL.
11: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है. उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया. बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा. जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए. ईमान, इत्तेहाद, तंजीम. ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन. इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं. तंजीम के सब्र, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी. इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे. क्योंकि जो 3 असूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे. मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक. पाकिस्तान जिंदाबाद.
12: किसने कहा था पैसे बचा?

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फोहश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए पीटीए और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
5: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
0: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
6: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata per Jazz Cash से 50% cash back और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
7: At shopping of 5,000 rupees
6: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
8: Brand new Suzuki Alto जीतना चाहते हैं? बस अपने Easy Paisa account में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा deposit करें. Balance 20 दिन तक maintain करें और lucky draw में 4 Suzuki Alto या 50,000 के 100 cash prizes जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का? अभी deposit करें और जीतें. Easy Paisa Digital Bank, Easy वाला बैंक.
9: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
10: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
11: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
12: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
13: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है। उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें 3 असूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ایمان، اللہ پہ یقین، اپنے مقصد پر یقین، اتحاد کہ مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں، تنظیم کہ صبر، ہمت، مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی۔ اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھائیں، یہ عہد بھی کریں، ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے، کیونکہ جو 3 اصول پاکستان بنا سکتے ہیں وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک، پاکستان زندہ باد۔
14: 79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں، خوشی میں، یادوں میں، جذبوں میں، ارادوں میں۔ یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر۔

0: buckle up for the joyride.
1: Yeehaw!
0: Let's put the pedal to the metal. FM 100, leading on the FM dial.
2: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cash back aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
5: At shopping of 5,000 rupees
4: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
6: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se naye shoes kharide aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cash back hasil kare. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. आज ही शॉपिंग करें और कैश बैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।

0: Hindustan Zindabad.
1: This song is brought to you by EcoStar.
2: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ.
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान. इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान. कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए. टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका. आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात. तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान.
6: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ.
7: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मेयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पर दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार. सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए.
8: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाए बेशुमार कीमती इनाम.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
9: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार.
10: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे ₹1000 का डिस्काउंट पाएं. तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
11: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया. बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा. जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए. ईमान, इत्तेहाद, तंजीम. ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन. इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं. तंजीम के सब्र, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी. इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाएं, ये अहद भी करें हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे. क्योंकि जो 3 उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे. मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक. पाकिस्तान जिंदाबाद.
12: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना.
13: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर रबते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तरह ना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

0: location for maximum music.
1: अभी इजी पैसा लोडिंग पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे ₹1000 का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: HBL Freedom account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom account jahan khwab wahan HBL.
4: Aaj subah gaadi mein apne paison se petrol dalwana, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
5: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।
2: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cash back और Honda Elantra जीतने का मौका.
6: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
7: Brand new Suzuki Alto जीतना चाहते हैं? बस अपने Easy Paisa account में ₹15,000 या उससे ज्यादा deposit करें. Balance 20 दिन तक maintain करें और lucky draw में 4 Suzuki Alto या 50,000 के 100 cash prizes जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का? अभी deposit करें और जीतें. Easy Paisa Digital Bank, Easy वाला Bank.
8: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया. सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए.
9: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खा वहां HBL।
1: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जोंग मंथली प्रो मैक्स प्लस पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे ₹100 का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर कारोबार माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायद आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए, ईमान इत्तेहाद तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन, इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं। तंजीम के सब्र हिम्मत मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे, क्योंकि जो 3 असूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.
2: Turn on the power. This is FM 100.

0: This program was brought to you by Femex Laga Aur Bhula Ja, Femex Laga Aur Bhula Ja, and HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL. And
1: Sir Subs Pakistan Challenge ki audio par apni video upload kare aur paiye jeetne ka mauka iPhone 17 Pro Max, electric bike aur shandar qeemti inamat.
0: And Sona Julia Granular, mitti ka maan badhaye. And
2: har Pakistani ke dil ki pukar, chai bane bas kapal dane dhar.
3: Aaj subah gaadi mein apne paison se petrol dalwana, ye hai asal azadi. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार.
4: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
5: At shopping of 5,000 rupees
4: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
1: Har shahar ki apni pehchan, har kone mein basa hai Pakistan. Is jashn-e-azadi, Fatma Fertilizer ke saath milkar, buland kare apne shahar ki shaan. Camera uthaiye aur apne Pakistan ki khoobsurti dikhaiye. TikTok, Instagram ya Facebook par hashtag Dil Se Sarsabz ke saath Sarsabz Pakistan Challenge ki audio par apni video upload kare aur paiye jeetne ka mauka iPhone 17 Pro Max, electric bike aur shandar qeemti inamat. To aao dil se dekhein Sarsabz Pakistan.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
6: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार.
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ.
3: आजादी का जश्न अब बाटा के संग. बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट. अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ.
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात.
5: किसने कहा था पैसे

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस का पालदाने दार।
1: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: महिलाना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: This song is brought to you by EcoStar.
1: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
2: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
5: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
6: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
7: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
8: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
5: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
7: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
8: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
7: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
5: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
8: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
5: आइए वेट से आगे का सोचें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना ना भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
11: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaa, wahan HBL.
1: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: Har Pakistani ke dil ki pukar. Chai bane, bas kapal danedar.
4: Roz subha. अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
5: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार. Chai bane, bas kapal danedar.
1: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं। इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फ़ालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राब्ता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना सीएनआईसी और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के इंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
3: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे।
1: Your location for maximum music.

The only choice for Radio 100 FM.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमत।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: विवाद स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: sale, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
1: At shopping of 5,000 rupees
0: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
7: जुमातुल मुबारक की खुसूसी नशियात आप सुनेंगे सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
8: कराची, लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। अब आप सुनेंगे एफएम 100 पर मक्कतुल मुकर्रमा से नमाज जुमा।
9: अल्लाहु अकबर, अल्लाह

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ। आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
2: पाकिस्तान में बढ़ चढ़ हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी जानने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औक़ात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। राब्तों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम राब्तों को पैगाम भेजें। मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉलो करें। सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप वेरिफिकेशन या एक 6 हिंसों का पिन सेट करें जो सिर्फ आपको याद हो। ईमेल एड्रेस जरूर शामिल करें। ईमेल शामिल करने से पिन दोबारा सेट हो सकता है। अकाउंट तेजी से फॉल हो जाता है, हैकिंग के इम्कान कम हो जाते हैं। तस्दीकी कोड कभी किसी के साथ शेयर न करें, चाहे पैगाम दोस्त का हो या किसी अदारे के नाम से हो। कोड शेयर करना सीधा अकाउंट हैक होने के बराबर है। जाली लिंक्स और ऑफर से बचें। मुफ्त इंटरनेट, इनाम, सरकारी या बैंक के जाली पैगाम से होशियार रहें। ऐसे लिंक्स पर क्लिक न करें। व्हाट्सएप लिंक डिवाइसेस चेक करें। सेटिंग्स, लिंक डिवाइसेस, अगर कोई नामालूम डिवाइस नजर आए तो फौरन लॉग आउट करें। फोन लॉक और बायोमेट्रिक इस्तेमाल करें। अगर फोन महफूज नहीं होगा तो व्हाट्सएप भी महफूज नहीं रहेगा। पिन, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर फॉलो करें। याद रखें, व्हाट्सएप हैकिंग कोई तकनीकी जादू नहीं बल्कि ज्यादातर इंसानी गलती की वजह से होती है। थोड़ी सी आगाही और एहतियात से आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं और अपने दोस्तों को नुकसान से बचा सकते हैं।
3: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
4: Well, it's happening آج بھی، so keep up. Bata پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈا ایلنٹرا جیتنے کا موقع
6: at shopping of 5,000 روپیز
4: only. And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
7: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت. سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز، کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
8: پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس کا پال دانے دار.

0: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
1: One station.
2: 100 FM.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan? Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
4: At shopping of 5000 rupees
3: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
5: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
7: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
8: 100 FM।
9: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट शूज अब पाए जबरदस्त बचत के साथ।
1: ऐसी ऑफर्स अब कहाँ।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप ए सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप ए सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर।
1: ऐसी ऑफर्स अब कहाँ।

0: FM
1: 100. Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back. Aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
4: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
0: 100 FM।
6: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

FM 100.

0: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट शूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
2: 100 FM।
3: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: प्लास्टिक पैकेट सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे ₹1000 का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट शूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
2: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें। फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए। याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके। पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना। याद रखें, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता। लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक ना करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर ना करें। और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें। अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या pt

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
3: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यूफोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
6: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मेयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छट्टा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
7: 100 FM।
8: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जोंग मंथली प्रो मैक्स प्लस पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हाय फ्रेंड्स, आई एम विकास जुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बट ड्रग्स are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: Ye pagham, Hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है कर बाले।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.

0: Simply Sufi Express. I like it.
1: सोना यूरिया ग्रैनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया. सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए.
2: 100 FM.
3: छम छम छम किताबे लेके निकले हम. अम्मी ने कहा ना रुकना तुम. रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

your location for maximum music.

0: सिंपली सूफी एक्सप्रेस, आई लाइक इट।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका
3: at shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मेयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

0: 100 FM.
1: चम चम चम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah.
1: No new music. No new music.
2: 100.
3: I want you to love me.
4: This is FM 100.
5: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
6: One station,
7: 100 FM.
8: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशाद बारी ताला है, जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। सूरह अनफाल। FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: सिंपली सूफी एक्सप्रेस, आई लाइक इट।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Brand new Suzuki Alto jeetna chahte hain. Bas apne easy paisa account mein 15,000 rupaye ya usse zyada deposit karein. Balance 20 din tak maintain karein aur lucky draw mein 4 Suzuki Alto ya 50,000 ke 100 cash prizes jeetne ka mauka paayein. To intezaar kis baat ka? Abhi deposit karein aur jeetein. Easy paisa digital bank. Easy wala bank.
2: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par JazzCash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
4: Abhi easy paisa load in packages hub se Jazz V5 fantastic package subscribe karein. Aur aaram se ghar baithe 1,000 rupees ka discount paayein. To der kis baat ki? Crazy discounts unlock karo. With easy paisa digital bank. Easy wala bank.
5: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
6: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज़ कैश ऐप नाउ।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
8: सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
9: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
10: 100 FM.
11: Chum chum chum, kitabe leke nikle hum. Ammi ne kaha na rukna tum, roz roz aage badhte rahe hum.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।

0: तंग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
1: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यूफोन या टेलेनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: Abhi easy paisa load in packages hub se Jazz V5 fantastic package subscribe kare aur aaram se ghar baithe 1000 rupees ka discount paaye. To der kis baat ki? Crazy discounts unlock karo with easy paisa digital bank, easy wala bank.
5: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
7: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायद आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं। तंजीम के सब्र, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे, क्योंकि जो 3 उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल यूआरएल जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, ओटीपी या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की आईटी टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
1: ये मुफादे आमाल का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: महरारा देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें तीन उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं। तंजीम के सब्र, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो तीन असूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
2: 79 सालों से पीटीसीएल है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में। ये कौमी तराना पीटीसीएल की तरफ से पाकिस्तान की नजर।

0: जिंदाबाद।
1: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Brand new Suzuki Alto jeetna chahte hain? Bas apne Easy Paisa account mein 15,000 rupees ya usse zyada deposit karein. Balance 20 din tak maintain karein aur lucky draw mein 4 Suzuki Alto ya 50,000 ke 100 cash prizes jeetne ka mauka paayein. To intezaar kis baat ka? Abhi deposit karein aur jeetein. Easy Paisa Digital Bank, easy wala bank.
2: HBL Freedom account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाए जबरदस्त बचत के साथ।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
7: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 1,000 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
9: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन, इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं। तंजीम के सब्र, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाएं, ये अहद भी करें हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे, क्योंकि जो 3 उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौमे आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
10: किसने कहा था

0: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।

0: सिंपली सूफी एक्सप्रेस, आई लाइक इट।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
2: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार.
4: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
5: At shopping of 5,000 rupees
4: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
6: Brand new Suzuki Alto जीतना चाहते हैं? बस अपने Easy Paisa account में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा deposit करें. Balance 20 दिन तक maintain करें और lucky draw में 4 Suzuki Alto या 50,000 के 100 cash prizes जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का? अभी deposit करें और जीतें. Easy Paisa Digital Bank, Easy वाला Bank.
7: HBL Freedom account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त checkbook, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
8: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार.
9: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान. इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान. कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए. टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर #DilSeSarSabz के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात. तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान.
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार.
10: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम. बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें. इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें.
11: 100 FM.
12: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: Family Radio Station. Family Radio Station. Non-stop music. Music of your choice. 100 FM. 100 FM.
1: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
3: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं.
2: मतलब?
3: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat. Alloy rims और sunroof.
2: Special तो लग रही है.
3: और price सिर्फ 64,49,000.
2: अब समझ आया इसे special edition क्यों कहते हैं. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर. 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक.
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खार वहां HBL.
6: आजादी का जश्न अब बाटा के संग. बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर. पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट. अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ.
7: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खार वहां HBL.
8: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार. चाय बने बस कपाल दानेदार.
9: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
10: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे ₹1,000 का डिस्काउंट पाएं. तो देर किस बात की? क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
11: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
12: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है. उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया. बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा. जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए. ईमान, इत्तेहाद, तंजीम. ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस कपाल दानेदार।
1: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: सिंपली सूफी एक्सप्रेस, आई लाइक इट।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: Hey yo, single again? Ujad gaya raaton ka chain. You deserve better ke chhid gayi again. No compatibility ya lage plans. Phir se wali aunty ko paison se karz hai. Shaadi kab kar rahe hai kya poochna farz hai? कब तक चलेगी ये चाय पार्टी घर पे? देखने आए हैं दुपट्टा लो सर पे। कास का मसला कभी क्लास का मसला, कभी पुप्पो या खाला या सास का मसला, मेरी उम्र बड़ी है या कमर बड़ी, अगर आपको मसला तो रखिए फासला। रिश्ता पसंद आया? नहीं।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात.
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cash back aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
6: At shopping of 5,000 rupees
5: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
7: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se naye shoes khareede aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cash back hasil kare. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. आज ही शॉपिंग करें और कैश बैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
8: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना.
9: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार.

0: BTCL के साथ हर बदलता जमाना करें अपने नाम, क्योंकि आज भी हम हैं पाकिस्तान जितने जवान।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार। जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना। पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
2: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर #DilSeSarSabz के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका iPhone 17 Pro Max, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
3: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 1,000 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
5: 100 FM।
6: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ.
4: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार.
5: आजादी का जश्न अब बाटा के संग. बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट. अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ.
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार.
7: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
8: At shopping of 5,000 rupees
7: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
9: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे हजार रुपए का डिस्काउंट पाएं. तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
10: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया. सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए.
11: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
12: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
13: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी अमानत है. उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया. बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा. जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए. ईमान, इत्तेहाद, तंजीम. ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन. इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए. तंजीम के सब्र, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी. इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें. हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे क्योंकि जो 3 असूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे. मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक. पाकिस्तान जिंदाबाद.
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात.
14: किसने कहा था पैसे बचा.

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।
6: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा,
8: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: एंड सर सब पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात।
8: एंड
10: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
8: एंड
5: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।

0: फ्रॉम द हाउस ऑफ 6B फूड इंडस्ट्रीज।
1: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
5: At shopping of 5,000 rupees
4: only, and you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
7: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
9: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
10: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर #DilSeSarSabz के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका iPhone 17 Pro Max, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
11: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 1,000 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
12: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
13: 100 FM।
14: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: पानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
1: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है। ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीजिए।
2: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
4: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
5: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट शूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
6: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।

0: Rajasthan Zindabad.
1: This song is brought to you by EcoStar.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
3: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
2: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस कपाल दानेदार।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक,
0: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस कपाल दानेदार।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है, जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: 100 FM।
6: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: PTCL के साथ हर बदलता जमाना करें अपने नाम, क्योंकि आज भी हम हैं पाकिस्तान जितने जवान।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
3: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
3: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
4: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
5: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
4: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
3: आइए वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
8: आम चीजों पर समझौता क्यों करें। शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
9: रग रग में

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।
0: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जोंग मंथली प्रो मैक्स प्लस पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे ₹100 का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, ₹79 तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
6: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।
8: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
5: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, ₹79 तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायद आजम ने हमें 3 असूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं। तंजीम के सब्र, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो 3 असूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
10: किसने कहा था?

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस का पाल दानेदार।
1: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर JazzCash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Late night अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
2: Well, it's happening आज भी. So keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Honda Elantra जीतने का मौका.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
5: सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया. सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए.
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
8: 100 FM.
9: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर। ऐसी ऑफर्स अब कहाँ।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
5: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
2: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
6: Around the world.
7: आप सुन रहे हैं FM 100, आपका अपना रेडियो स्टेशन।
8: FM 100.

0: सुन रहे हैं FM 100 आपका अपना रेडियो स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
1: अज़ान इशा पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तआवुन से।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज इशा का वक्त हो गया है।

0: फ्रॉम द हाउस ऑफ 6B फूड इंडस्ट्रीज।
1: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
2: Well, it's happening आज भी, so keep up. बाटा पर जैस कैश से 50% कैश बैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
5: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।

0: Ahmedabad.
1: This song is brought to you by EcoStar.
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
2: स्पेशल तो लग रही है.
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
4: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना.
5: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
6: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
7: 100 FM.
8: छम छम छम किताबें लेके निकले हम. अम्मी ने कहा ना रुकना तुम. रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: BTCL के साथ हर बदलता जमाना करें अपने नाम, क्योंकि आज भी हम हैं पाकिस्तान जितने जवान।
1: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
2: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300 555 0011 पर।

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर. ऐसी ऑफर्स अब कहाँ.
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
4: आजादी का जश्न अब बाटा के संग. बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर. पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट. अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ.
5: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.

Sana tebe. This is your music.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
3: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।

0: This song is brought to you by EcoStar.
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: 100 FM।
5: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
5: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
6: 100 FM.
7: You know that car next to you at the stoplight that's causing your spleen to vibrate? That's our fault. You know that friend you can never get hold of because they have their stereo permanently set on stun? That's our fault.
6: 100 FM.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
2: Well, it's happening आज भी, so keep up. बाटा पर जैस कैश से 50% कैश बैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
5: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
6: This song is brought to you by EcoStar.
7: Suno, this one's for the land, from the heart.

0: Zindabad.
1: This song is brought to you by EcoStar.
2: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
3: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
5: 100 FM।
6: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।